so much bidding on it. कितने मुझसे बहुत की नहीं कर रहे हो? मैं बस ये समझना चाहती कि क्या हुआ है? अगर मैं कुछ कर सकती, अगर मैंने कुछ किया है, तो मुझे बस